0: गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों, प्यारे अजीज साथियों, आरजी अदनान मेरा नाम है और मैं आता हूँ आपकी मॉर्निंग गुड करने के लिए हर सुबह 7 से 11 इन द शो
1: ऑल इज वेल आरजी अदनान का मॉर्निंग शो फ्रेशनेस लाइव रेडियो का फ्लो
0: ऑन एमजीएम 90.8 एफएम। एक नई सोच के साथ आपकी सुबह, आज की सुबह की शुरुआत करते हैं महात्मा गांधी जी के ऐसे विचार से जो कि जितना सीधा है उतना ही गहरा है। बस समझ लीजिएगा और अपनी जिंदगी को आसान बनाइएगा, क्योंकि गांधी जी कहते हैं कि खुशी तब होती है जब आपके विचार, आपके शब्द और आपके कर्म तीनों एक जैसे हो। कितनी सच्ची बात है ना। हम सब जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं, पर कई बार हम खुद से झूठ बोल देते हैं। विचार कुछ और, बात कुछ और कर्म कुछ और होता है। फिर मन के अंदर एक खींचतान शुरू हो जाती है, जैसे दो अलग अलग रास्तों पर चलने की कोशिश, और वहीं से शुरू होती है बेचैनी। सोचिए, जब हम वही सोचे जो दिल कहे, वही बोले जो सच में महसूस करे, और वही करे जो सही लगे, तो अंदर से एक सुकून आ ही जाता है। वही असली खुशी होती है मेरी जान। तो आज की सुबह का मंत्र यही है कि खुश रहना है तो खुद के साथ सच्चे रहिए। विचार, शब्द और कर्म तीनों को एक लाइन में जलाइए, क्योंकि जब अंदर और बाहर दोनों एक जैसे होते हैं, जिंदगी बड़ी सिंपल, बड़ी खूबसूरत नजर आने लगती है। सो यही एक गुड वाली मॉर्निंग का विचार याद रखिएगा जो कि गांधी जी ने कहा था, और अपने मॉर्निंग को एकदम गुड बनाइएगा इसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ। आगे बढ़ते हैं और कुछ ही देर के बाद लौट कर आता हूँ। तब तक के लिए एंजॉय करना आने वाले सुपर हिट गाने, और फिर से एक बार आपको तहे दिल से गुड वाली मॉर्निंग एंड स्टे ट्यून।

इनको भी है मेरा खुमार, इनको भी है इनके लिए है मोहतरम, छेड़ा किसी और को था खुदा की कसम। हाँ देखिए साहिबो, वो कोई और थी, और ये नाजनी है मेरी, मैं इन पे मरता हूँ।

आज पर यकीन अब कम सही मैं सादा दिल मुझे दिम सही इनके लिए मोहतरम छेड़ा किसी और को था।

0: एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही है? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रिकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, पोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, NH5, छत्रपति संभाजीनगर।
2: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनबाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
3: देश के हर गरीब, हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
2: आज ही अपनी नजदीकी आंगनबाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनबाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

0: फरमाइश आपकी फरमाइश पूरी करना मेरा हक है. All is well. On MGM 90.8 FM. फरमाइश आई है मनीषा देशमुख की तरफ से इस बढ़िया से 70s के गाने की.
1: पल पल दिल के पास,
0: पल पल दिल के पास, किशोर कुमार जी की आवाज में बढ़िया सा बेहतरीन सा गाना है. फिल्म थी ब्लैकमेल, 1973 में फिल्म आई थी और इस गाने के लिरिक्स लिखे थे राजेंद्र कृष्णा ने. मनीषा जी की फरमाइश पूरी करते हैं और अगर आपकी भी ऐसी कुछ फरमाइश हो तो हमें व्हाट्सएप करके जरूर बताइए 9359320080 पर. आपकी फरमाइश मैं पूरी करूंगा, ये मेरा वादा है. एंड स्टे ट्यून्ड ऑन MGM 90.8 FM.

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको एंड 5, छत्रपति संभाजीनगर।

लेट्स टॉक अबाउट सिटी अपडेट। सिटी में चल क्या रहा है? तो बात कुछ ऐसी है कि गणपति बाप्पा का आगमन अपने रास्तों से तो हो गया था, जो रास्ते कम और खड्डे ज्यादा थे, तब विसर्जन तो भी बाप्पा का ऐसे गड्ढो वाले रास्तों से ना हो, इस वजह से प्रशासन की आंखें खुल गई है। आणि त्यांनी आता जे विसर्जन मिरवणुकीचे मार्ग आहेत ना, त्यांच्यावर काम करायला सुरुवात केलेली आहे। त्या ठिकाणी जर खड्डे असतील तर त्यांना बुजवण्याचं काम सुरू आहे, पॅच वर्क सध्या सुरू आहे। सो गणपती बाप्पा, आपसे एक मैं बात करना चाहता हूँ कि आप थोड़े हमारे प्रशासन को ना हिदायत दीजिएगा, उन्हें थोड़ी बुद्धि दीजिएगा कि ये जो रास्ते हैं ना अपने शहर के, ये हमेशा ठीक ही रहे और एकदम चकाचक ये रास्ते बनाए। वरना ये क्या करते हैं बाप्पा, पता है आपको, आप जब तक है तब तक ये काम कर रहे हैं, अब आप जाने के बाद ना रास्तों पर गड्ढा या गड्ढे में रास्ता होगा, ये किसी को कुछ नहीं पड़ती है। जब तक कोई आम आदमी परेशान नहीं होगा, कोई गिर ना जाएगा, तब तक इनकी आंखें नहीं खुलती है। खैर, अभी आप है बोलकर इनकी आंखें खुल गई है, अच्छी बात है। तो आप इनको थोड़ी हिदायत दीजिएगा और समझाइएगा प्रशासन को, थोड़ा आशीर्वाद भी दीजिएगा कि अपने शहर के सारे रास्ते ही चकाचक कीजिएगा और गड्ढा मुक्त छत्रपति संभाजीनगर कीजिएगा। आशीर्वाद आप प्रशासन को दे दिए तो प्रशासन जरूर काम करेगा। देखो, अब हमने तो कंप्लेन बाप्पा को कर दी प्रशासन की, आप प्रशासन काम कीजिएगा प्लीज यार। जो शहर में जितने भी गड्ढे है ना, और स्पेशली जो जालना रोड है शहर का मेन रोड, वहां से कभी कभार जाते हुए ऐसा लगता है कि भाई बैलगाड़ी बेटर है भाई, इससे ऐसे रास्ते हो गए है। खैर, विसर्जन मिरवणूक मार्गावर जे काही खड्डे आहेत, रस्ते खराब आहे, ते व्यवस्थित करण्याचं काम सुरू आहे। सो थँक यू महानगरपालिका, अँड स्टे ट्यून विथ आर जे अदनान, ओनली ऑन MGM 90.8 FM.

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, रेडको एन 5, छत्रपति संभाजीनगर।

0: यूपीआई में जो कुछ चेंजेस आए ना, तो वो हम सभी को तो पता ही है। तो अगर आपने 2000 के ऊपर यूपीआई पेमेंट किया तो आपको तकरीबन 0.4% का चार्जेस लगने वाला है, ऐसा हर किसी को लग रहा था। तो बात कुछ ऐसी है कि वो चार्जेस हमें नहीं लगेगा, मतलब जो मर्चेंट है, जो दुकानदार है, उन्हें वो चार्ज पे करना पड़ेगा। अब फॉर एग्जांपल, कैसे आपने 5000 की पेमेंट की दुकानदार को, उसके ऊपर 0.4% मतलब 20 रुपए चार्ज दुकानदार का कटने वाला है। मतलब हम भले उसको 5000 सेंड कर रहे हैं, लेकिन उनके अकाउंट में 4980 रुपए आने वाले है। और यही बात ना एक दुकानदार से मैं कर रहा था, ऐसे ही बातों में टॉपिक निकला था। तो उन्होंने कहा कि हम हमारा नुकसान तो नहीं करवाएंगे, अगर आपका बिल 5000 हो रहा है, हम उनको कहेंगे अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हो तो 5000 20 रुपए कीजिएगा, अगर कैश में देना चाहते हो तो आप 5000 दीजिएगा। क्योंकि दुकानदार का भी कहना यही है कि यार हम अपना नुकसान क्यों करवाए 20 रुपए का। आपके पास दो ऑप्शन रहेंगे, या आप ऑनलाइन पेमेंट करो या फिर ऑफलाइन। सो कुछ ऐसा सिंपल तरीके से समझ में आ जाए तो समझिएगा आप। और हाँ, एक और सवाल होता है कि यार मैंने अगर मेरे किसी दोस्त को पैसे सेंड किया तो वो चार्जेस कटेंगे क्या? तो बिल्कुल नहीं, पर्सन टू पर्सन, यानी कि मैंने अगर आपको पैसा पे किया तो चार्जेस नहीं कटेंगे, लेकिन मैंने अगर किसी दुकानदार को पैसा पे किया तो चार्जेस कटेंगे, वो भी हमारे नहीं, पे करने वाले के नहीं, रिसीव करने वाले के, मर्चेंट के। तो इस तरीके से ये नए रूल्स है, जो समझिएगा और कंफ्यूज मत होइएगा। स्टे ट्यून्ड
1: only on MGM 90.8 FM.

0: प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धनराशि।
1: नमस्कार, छत्रपति संभाजी नगर।
2: तुम्ही ऐकत आहात MGM 90.8 FM।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर।
2: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
3: देश के हर गरीब, हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
2: आज ही अपनी नजदीकी आंगनबाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनबाड़ी है हमारी जिम्मेदारी। अच्छा।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही है? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुँचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनबाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनबाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

0: हर एक गाने की एक कहानी होती है, एक किस्सा होता है, एक मीनिंग होता है, तो इसे कहते हैं सॉन्ग डिकोडिंग। द सॉन्ग डिकोडिंग विद मी यानी कि आरजे अदनान ऑन MGM 90.8 FM।
1: ये गाना तो आपने सुना ही होगा ना,
2: इब्ने बतूता,
1: गानों के किस्से तेरे मेरे हिस्से में आरजे अदनान आपके साथ है। इस गाने में ना तो सफर यानी कि जर्नी के बारे में बात हो रही है, जिसे गुलजार साहब ने बड़े ही खूबसूरत तरीके से बजा किया है। इब्ने बतूता का मतलब यह है कि इतिहास में सफर का दूसरा नाम। इब्ने बतूता जो कि 14 सेंचुरी के एक ट्रैवलर थे, जिन्होंने ना तो अफ्रीका से लेकर चाइना तक तकरीबन 1.5 लाख किलोमीटर का सफर किया था और सब कुछ देख लिया था अफ्रीका से लेकर चाइना तक। गुलजार साहब की ना तो लिखावट देखिएगा कि बगल में जूता, इसका मतलब ये होता है कि वो जो इब्ने बतूता थे ना, वो हमेशा चलने के लिए तैयार होते थे। जैसे कि ये हम ना तो अपनी जिंदगी से भी ना तो रिलेट कर पाते हैं। जिंदगी जीते वक्त ना तो चाहे कितने भी मुश्किल आए, प्रॉब्लम आए, उसे हमें लेकर चलना ही तो है। इसके साथ ना तो एक और किस्सा जुड़ा है कि 14 सेंचुरी में ना तो ब्लैक डेथ नाम की एक महामारी आई थी। ये महामारी इतनी खतरनाक थी कि यूरोप और एशिया के तकरीबन 1/3 पॉपुलेशन खत्म हो गई थी। तो इब्ने बतूता जहाँ पर भी जाते थे ना, तो वहाँ पर ब्लैक डेथ की महामारी होती थी, इस वजह से उन्हें वहाँ से भागना पड़ता था। तभी गुलजार साहब ने लिखा था, अच्छे और बेस्ट लिरिसिस्ट की यही खासियत होती है कि वो अपने एक गाने में कई सारे कहानियां हमें बतलाता है। तो गानों के किस्से में आज की कहानी इस गाने की थी। तो चले फिर यही गाना एंजॉय करते हैं। स्टे ट्यून विद आरजे अदनान ऑन MGM 90.8 FM।
0: हर एक गाने की एक कहानी होती है, एक किस्सा होता है, एक मीनिंग होता है, तो इसे कहते हैं सॉन्ग डिकोडिंग। द सॉन्ग डिकोडिंग विद मी यानी कि आरजे अदनान ऑन MGM 90.8 FM।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रिकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रिकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर।
2: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026

0: तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनबाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनबाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? हाल हवाल एकदम मस्त, बढ़िया तो होगा ही यार। वैसे आरजी अदनान तो आपके साथ आया है, और फिलहाल ना तो कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर बस सल्लू भाई की चर्चाएं शुरू है। हालांकि उसे बिग बॉस के एपिसोड को 3-4 दिन तो हो गए, लेकिन जो शर्ट निकाला था सलमान खान ने और बताया था कि बुड्ढा होगा तेरा बाप, तो मतलब इसका मतलब यही है कि ट्रोलर्स को उन्होंने जो निशाना साधा था और ऐसी बोलती बंद कर दी कि तब से अब तक जैसे सोशल मीडिया ओपन करें ना, सलमान खान का नाम डालो ना डालो, बस सल्लू भाई की रील्स हमें दिखाई दे रहे हैं। बट एक बात तो है, मानना पड़ेगा भाई, तुम पंगा किसी से भी ले लो, सल्लू भाई से ना लिए तो बेटर है। क्योंकि जो भी सलमान खान से के नज़दीक थे, जिन जिनको ट्रोल किया था और इंडस्ट्री में ना, तो जो लोग सलमान खान को या उनके फैंस को या किसी भी एक्टर को ट्रोल करते हैं ना, तो उनको बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक चमाट मार दिया था सल्लू भाई ने उस दिन। मानना पड़ेगा भाई में ताकत तो है ही। और इसी के साथ कहते ना कि कुछ वो कुत्ते की दुम टेढ़ी तो टेढ़ी होती है, बट ये सब होने के बावजूद भी कुछ कुछ इंस्टा पेजेस ऐसे हैं जो आज भी ना तो वैसे वाले कॉन्टेंट डाल रहे हैं। मतलब किसी की फ़ोटो होती है और कहते हैं कि यार पहचानो ये कौन है, तो वो वही है ना कि कुत्ते की दुम टेढ़ी तो टेढ़ी ही। बट एक मानना है कि यार ऐसे ट्रोलर्स के ऊपर बिना तो इंडिया में कोई ना कोई कानून तो आना ही चाहिए, वरना एक बंदा होता है गली के चौराहे पर बैठता है और किसी बड़े इंसान को ट्रोल करता है, उसे लगता है कि भाई मैंने तो क्या ही बेहतरीन काम किया। तो भाई काम करना ही है तो अपने माँ बाप को प्राउड फील वाला काम करो, किसी और को ट्रोल करने वाला नहीं, समझे? और बाकी तो सुनते रहो आरजी अदनान के साथ MGM 90.8 FM पर। अगला गाना तेनू ना भूल पावांगा, स्टे ट्यून्ड।

0: ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर।
2: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
3: देश के हर गरीब, हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
2: आज ही अपनी नजदीकी आंगनबाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनबाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही है? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर।

0: बाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: फ्रीक्वेंसी नहीं, यह आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
0: ये है एनजीएम 90.8 FM।

0: फ्रीक्वेंसी नहीं, यह है आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
0: ये है एनजीएम 90.8 FM।

0: दिल की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
1: ये
0: अपना रेडियो, अपनी बातें, गीत, खबरें, जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: दिल की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: ये सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी नहीं, यह है आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
0: ये है FGM 90.8 FM।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजी नगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजी नगर।

0: प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही है तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही है? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजी नगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजी नगर।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर।

0: एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रिकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको एन 5, छत्रपति संभाजीनगर।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, रेडको एन 5, छत्रपति संभाजीनगर।

0: एक गाने की एक कहानी होती है, एक किस्सा होता है, एक मीनिंग होता है, तो इसे कहते हैं सॉन्ग डिकोडिंग। द सॉन्ग डिकोडिंग विद मी यानी कि आरजे अदनान ऑन MGM 90.8 FM।
1: ये गाना तो आपने सुना ही होगा ना,
2: इब्ने बतूता।
1: गानों के किस्से तेरे मेरे हिस्से में आरजे अदनान आपके साथ है। इस गाने में ना तो सफर यानी कि जर्नी के बारे में बात हो रही है, जिसे गुलजार साहब ने बड़े ही खूबसूरत तरीके से बजा किया है। इब्ने बतूता का मतलब यह है कि इतिहास में सफर का दूसरा नाम। इब्ने बतूता जो कि 14 सेंचुरी के एक ट्रैवलर थे, जिन्होंने ना तो अफ्रीका से लेकर चाइना तक तकरीबन 1.5 लाख किलोमीटर का सफर किया था और सब कुछ देख लिया था अफ्रीका से लेकर चाइना तक। गुलजार साहब की ना तो लिखावट देखिएगा कि बगल में जूता, इसका मतलब ये होता है कि वो जो इब्ने बतूता थे ना, वो हमेशा चलने के लिए तैयार होते थे। जैसे कि ये हम ना तो अपनी जिंदगी से भी ना तो रिलेट कर पाते हैं। जिंदगी जीते वक्त ना तो चाहे कितने भी मुश्किल आए, प्रॉब्लम आए, उसे हमें लेकर चलना ही तो है। इसके साथ ना तो एक और किस्सा जुड़ा है कि 14 सेंचुरी में ना तो ब्लैक डेथ नाम की एक महामारी आई थी। ये महामारी इतनी खतरनाक थी कि यूरोप और एशिया के तकरीबन 1/3 पॉपुलेशन खत्म हो गई थी। तो इब्ने बतूता जहाँ पर भी जाते थे ना, तो वहाँ पर ब्लैक डेथ की महामारी होती थी, इस वजह से उन्हें वहाँ से भागना पड़ता था। तभी गुलजार साहब ने लिखा था, और बेस्ट लिरिसिस्ट की यही खासियत होती है कि वो अपने एक गाने में कई सारी कहानियां हमें बतलाता है। तो गानों के किस्से में आज की कहानी इस गाने की थी। तो चलिए फिर यही गाना एंजॉय करते हैं। स्टे ट्यून विद आरजे अदनान ऑन MGM 90.8 FM।
0: हर एक गाने की एक कहानी होती है, एक किस्सा होता है, एक मीनिंग होता है, तो इसे कहते हैं सॉन्ग डिकोडिंग। द सॉन्ग डिकोडिंग विद मी यानी कि आरजे अदनान ऑन MGM 90.8 FM।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, रेडको एन 5, छत्रपति संभाजीनगर।

0: टॉक अबाउट सिटी अपडेट. सिटी में चल क्या रहा है? तो बात कुछ ऐसी है कि गणपति बाप्पा का आगमन अपने रास्तों से तो हो गया था, जो रास्ते कम और खड्डे ज्यादा थे, तब विसर्जन तो भी बाप्पा का ऐसे गड्ढों वाले रास्तों से ना हो, इस वजह से प्रशासन की आंखें खुल गई है. आणि त्यांनी आता जे विसर्जन मिरवणुकीचे मार्ग आहेत ना, त्यांच्यावर काम करायला सुरुवात केलेली आहे. त्या ठिकाणी जर खड्डे असतील तर त्यांना बुजवण्याचं काम सुरू आहे. पॅच वर्क सध्या सुरू आहे. सो गणपती बाप्पा, आपसे एक मैं बात करना चाहता हूँ कि आप थोड़े हमारे प्रशासन को ना हिदायत दीजिएगा, उन्हें थोड़ी बुद्धि दीजिएगा कि ये जो रास्ते हैं ना अपने शहर के, ये हमेशा ठीक ही रहे और एकदम चकाचक ये रास्ते बनाए. वरना ये क्या करते हैं बाप्पा, पता है आपको, आप जब तक है तब तक ये काम कर रहे हैं, अब आप जाने के बाद ना रास्तों पर गड्ढा या गड्ढे में रास्ता होगा, ये किसी को कुछ नहीं पड़ती है. जब तक कोई आम आदमी परेशान नहीं होगा, कोई गिर ना जाएगा, तब तक इनकी आंखें नहीं खुलती है. खैर, अभी आप है बोलकर इनकी आंखें खुल गई है, अच्छी बात है. तो आप इनको थोड़ी हिदायत दीजिएगा और समझाइएगा प्रशासन को, थोड़ा आशीर्वाद भी दीजिएगा कि अपने शहर के सारे रास्ते ही चकाचक कीजिएगा और गड्ढा मुक्त छत्रपति संभाजीनगर कीजिएगा. आशीर्वाद आप प्रशासन को दे दिए तो प्रशासन जरूर काम करेगा. देखो, अब हमने तो कंप्लेन बाप्पा को कर दी प्रशासन की, आप प्रशासन काम कीजिएगा प्लीज यार. जो शहर में जितने भी गड्ढे है ना, और स्पेशली जो जालना रोड है शहर का मेन रोड, वहां से कभी कभार जाते हुए ऐसा लगता है कि भाई बैलगाड़ी बेटर है भाई, इससे ऐसे रास्ते हो गए है. खैर, विसर्जन मिरवणूक मार्गावर जे काही खड्डे आहेत, रस्ते खराब आहे, ते व्यवस्थित करण्याचं काम सुरू आहे. सो थँक यू महानगरपालिका, अँड स्टे ट्यून.
1: ओनली ऑन MGM 90.8 FM.

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, रेडको एन 5, छत्रपति संभाजीनगर।

0: दुनिया में जो कुछ चेंजेस आए हैं ना, तो वो हम सभी को तो पता ही है। तो अगर आपने 2000 के ऊपर UPI पेमेंट किया तो आपको तकरीबन 0.4% का चार्जेस लगने वाला है, ऐसा हर किसी को लग रहा था। तो बात कुछ ऐसी है कि वो चार्जेस हमें नहीं लगेगा, मतलब जो मर्चेंट है, जो दुकानदार है, उन्हें वो चार्ज पे करना पड़ेगा। अब फॉर एग्जांपल कैसे, आपने 5000 की पेमेंट की दुकानदार को, उसके ऊपर 0.4% मतलब 20 रुपए चार्ज दुकानदार का कटने वाला है। मतलब हम भले उसको 5000 सेंड कर रहे हैं लेकिन उनके अकाउंट में 4980 रुपए आने वाले हैं। और यही बात ना एक दुकानदार से मैं कर रहा था, ऐसे ही बातों में टॉपिक निकला था। तो उन्होंने कहा कि हम हमारा नुकसान तो नहीं करवाएंगे, अगर आपका बिल 5000 हो रहा है तो हम उनको कहेंगे अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हो तो 5000 20 रुपए कीजिएगा, अगर कैश में देना चाहते हो तो आप 5000 दीजिएगा। क्योंकि दुकानदार का भी कहना यही है कि यार हम अपना नुकसान क्यों करवाए 20 रुपए का, आपके पास दो ऑप्शन रहेंगे, या आप ऑनलाइन पेमेंट करो या फिर ऑफलाइन। सो कुछ ऐसा सिंपल तरीके से समझ में आ जाए तो समझिएगा आप। और हाँ, एक और सवाल होता है कि यार मैंने अगर मेरे किसी दोस्त को पैसे सेंड किया तो वो चार्जेस कटेंगे क्या? तो बिल्कुल नहीं, पर्सन टू पर्सन, यानी कि मैंने अगर आपको पैसा पे किया तो चार्जेस नहीं कटेंगे, लेकिन मैंने अगर किसी दुकानदार को पैसा पे किया तो चार्जेस कटेंगे, वो भी हमारे नहीं, पे करने वाले के नहीं, रिसीव करने वाले के, मर्चेंट के। तो इस तरीके से ये नए रूल्स है, जो समझिएगा और कन्फ्यूज मत होइएगा। स्टे ट्यून्ड
1: only on MGM 90.8 FM.

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर।

0: आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
1: MGM 90.8 FM।

0: देखने दो,
1: जल भी रहे हैं।
0: अरे तो जलने दो,
1: खुली सड़क है बाबा।
0: तो क्या हुआ भाई?
1: हाँ तो हजार

0: दिल की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: ये सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी नहीं, यह है आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान। जनरेडी